याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंत दिव्यनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारे अटोबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन हा अनवर्त मरनेन गैलवीम सेलसो मैनव में की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहां से उदिसाम अपटले बेवा आमेन।